0: सूचना संचार प्रस्तुत गर्दछ
1: सबल अनि विश्वसनीय ब्याङ्क
2: शुभम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज।

0: sing to Chun Li right now.
1: You kill me.
2: What happened?
0: I'm
2: killing
0: you. Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया।

नागिन नागिन कितने शॉट्स पिए नागिन फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं नाचे तू जैसे नागिन कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है थोड़ी गुस्सा है थोड़ी कंफ्यूज है लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज है दिल कर ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज है तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो।

कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी, जदों मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी। एक गल तू पल्ले बन जाने, ये पल्ले बन मेरी, वो होर होणगे जिन्हां नूं तू पैरां विच रखदा। मैं प्यार हां तेरा, तवायफ नहीं तेरी, तवायफ नहीं तेरी।

0: हैना, आई हैव टू डू दिस, मुझे जाना होगा। आई एम नॉट ब्रेकिंग अप विद यू। हैना लुक एट मी यार, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, मेरे लिए नहीं हमारे लिए।
1: कबीर, पर मेरा क्या?
0: आई प्रॉमिस आई वोंट लीव यू, वोंट लेट यू डाउन, एंड आई लव यू।

0: Choice FM 90.4 MHz. संगम मेडी हेल्थ क्लिनिक गोर्खामा आधुनिक उपकरण र अनुभवी स्वास्थ्य कर्मी मार्फत विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण सेवा
1: क्लिनिकमा उपलब्ध सेवाहरू मुटु तथा रक्तचाप जाँच, सम्पूर्ण रक्त परीक्षण, सुगर परीक्षण, लिभर तथा किडनी कार्य सम्बन्धी परीक्षण, थाइराइड, कोलेस्ट्रोल, युरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, युरिन तथा स्टूल जाँच, साथै अन्य आवश्यक डायग्नोस्टिक सेवाहरू, छिटो रिपोर्ट, अनुभवी स्वास्थ्य